हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, हाजिर हाँ जी। मैं अपना मिला प्रोग्राम लेके, मैं हाँ ताड़ी दोस्त परमजीत, अज का प्रोग्राम लेके जेड़ा कि 1 to 2 बजे तक चलेगा। दोस्तों तुहानू पता ही है कि यह प्रोग्राम हर चौथे एतवार 1 to 2 बजे तक पेश किया जाता है रेडियो एडिलेट ते, ते तुसी सुन रहे हो रेडियो एडिलेट 101.5। दोस्तों अज के प्रोग्राम दे विच एक गैसट आए हुए ने मेरे नाल स्टूडियो दे विच, जिन्हां नाल मैं अज गल्लां बातां करांगी। पर गल्लां बातां दी शुरुआत करन तो पहलां क्यों ना आपां शुरुआत करदे हां प्रोग्राम दी इस गीत दे नाल, जिहड़ा कि सरबजीत चीमा जी दा इह गीत है रंगला पंजाब। ये गीत सुनो तो उस तो बाद आपां गल्लां बातां जारी रखांगे।